0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे शिवा ओ भगवत सासे कर रही है, ऐसे स्वयं को भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

Willen.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना, अकेला तो नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, पापा मेरा पापा, पापा हंस रहे, आपकी समस्या को हल कर देंगे, दिल से बोलना, पापा ये बात, पापा ये करो, पापा ये, पाप बंधा हुआ है, लेकिन दिल से ऐसे नहीं, मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, वो मेरे बाबा, वो मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते और दो चार घंटे के बाद अगर कोई बात

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

इस मोटे रूप से

Eskilliste. Abosme. Nikalna. Baap dada aaj nahi sunate. Hint to diya na to nikalna. सभी समझदार आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनेंगे। लेकिन बाप दादा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है, ऐसे ही बोल कर्म सब say.

0: भगवान संपर्क में।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रही है या कोई भी

psiquiatrarse. Así. Good job.

चौका लक्ष्य और लक्षण देख खुशी।

0: योग से काफी आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते रहना। एक दो को देख उनकी विशेषता को देखो, दूसरी बातों को नहीं देखो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स उठो, दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स, चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आई है, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है।
3: बाबा
1: मिस टीचर्स को

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जितना प्यार है ना उतना साथ में, प्यार भी चाहिए शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को बढ़ो, वायुमंडल बनाओ। एक दो किस सहयोगी बन, हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं। स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे अभी? नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, अमृत वेले बाप दादा देखते हैं। संकल्प अच्छे करते हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

अपने जीवन से हिम्मत हार चुकी है, अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए, नाउमीद हो गए, तो ये रहम दिल कृपा दया करने वाले विश्व के आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं
ईश्वर सर्वशक्तिमान विश्व

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्यवन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्यपन सुख की खुशी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप तो खुश रहते हो।

secret.

0: इसका टाइम फिक्स करना, क्योंकि अपने भाई बहन तो तरस पड़ता है ना, कि तरस नहीं पड़ता है ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shit.

ちゃがった。

Sí.

Es que lié.

avísame. Yo que sé.

सिर्फ

ASMR.

обязаны. Сказано.

Sick.

उससे अधिक

0: Shavakarnika. Parivartan. Karnika. Or attention.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दादियों ने डबल विदेशों को भी मर्ज किया, डबल विदेशी हो।

tiene Atilo. Pero, Benjamin.

0: vocês. Tati, o quê? Pode ler. Tati, querido. Tu tá de legal. Que mochê.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम
2: शिवा, जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है सेवा नहीं। और नीचे ऊपर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बन होती। सभी एकदम न्यारी और प्यारी बन करती, स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारी, चारों और
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Chacho। जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है ये, नहीं निकालना ही है तो दृढ़ संकल्प करेंगे। अभी हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मन से आप नहीं उठा रहे हैं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये आशय है दृष्टि लेना बाबा से, समर्पित वालों की यही आशय है।
2: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी है। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समान, ऐसी दृष्टि लेना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा भी देख रहे थे कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना क्या समय की पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रद तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए पूछो, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए अभी के

色带金明基 Master Sakharov

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा टीचर साथ उठो, अच्छा टीचर सभी स्वयं भी सफल करो और सफल करो सेवा में वृद्धि होना, अर्थात खजानों को सफल किया और करें तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सदैव वृद्धि होती जाएगी। हिम्मत दिलाओ, बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान में हिम्मत कम दिलाने की शक्ति है। हिम्मत दिलाओ हर कार्य में, मनसा में भी वाचा में भी संबंध संपर्क में भी कर्म में भी हिम्मत दिलाओ। टीचर्स की सीटी है हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना, क्यों? क्योंकि टीचर्स को जो बाप की मुरली सुनाने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी इसलिए

सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच्चाई होगी ना।

0: सच्चाई बहुत प्रिय।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, चाहे समझते भी है कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन निकलेंगे, लेकिन ऐसी भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कामन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: feststellen. Bisperzent Weste.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू निशानी तराजू इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों और हट चलो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां चाहो वहां एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती, सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Papa.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

Coffee. Bitte.

ಶಕ್ತಿ. ಸಂತೋಷ.

our son.

ಸಂತುಷ್ಟ

钱。Sleep.

0: Jan अद्भुत।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संगठन के बीच में हाथ उठाया ये कोई कम

ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी जुबान से भी किया किया तो सही ना, तो ऐसे प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का तो लाइन में आ जाएगी ना। तो जब भी कोई ऐसे हो उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया था, याद करो, अपने आप को ही फायदा है। अब आप तो खुश हो, मदद मिलेगी ऐसे ही याद करने से। इतने सारे भाई बहनों के बीच में आपने अपने दिल से प्रॉमिस किया तो वो मदद मिलेगी, क्योंकि सोचते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन उस हिम्मत को पानी देते रहो, बस प्रॉमिस किया बस छूट जाते। याद अपना हमेशा याद रखो, कितनी सभा है, पाप तो है, चाहते हो तभी तो हाथ उठाते हैं। तो जो चाहना है कहा है, हाथ उठाए नहीं, मन की मेरी चाहना है इसीलिए हाथ उठाए, तो उसको आगे बढ़ाते रहो, बात को न देख करके बढ़।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: भी बहुत उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बहुत उतर जाए तो अच्छा है, यहाँ आया है
1: आत्मा से है, प्रकृति से है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आए बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्ष

0: लेने वाले तो फरसा लेने वाले को दूसरों को फरसा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेहद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व को दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये देखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा, कोई बहुत रायल रूप का भी अलबेला बनते, एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब
2: समय मुस्कुराती है।
1: कहती है देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्योंकि चाहो नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो, उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ, अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसके पीट करके कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे, जितना हो सके योग्य आत्माएं देख करके अनुभवी मूर्त बनाओ, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा आते रहो। आप कहेंगे नहीं आओ तो भी आएंगे। अनुभव ऐसी चीज स्वयं को भी अनुभव में पढ़ाओ, जितना जितना अनुभव में और माता निबन की सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो ये जो टाइम वेस्ट होता है ना समस्याओं में, दादियों को भी समय देना पड़ता है और अपने को भी समय देना पड़ता है, वो समय बच जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कुछ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रतिज्ञा चाहते जैसे वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करते हो भी ज्यादा प्रभाव कौन और कर्म का ज्यादा पड़ता। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव किनों के नैनों विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक है। क्वेश्चन उठे उनके मन में, ये कैसे बने, कहां से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ये बनाने वाला कौन। ऐसे अपन ने बाप समान बनने के स्थिति द्वारा बाप को प्रतिज्ञा करो। मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती सृष्टि में इस वातावरण में रहते हुए ऐसा कोई बन सकता है तो आप उनको ये प्रतिज्ञा में बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रतिज्ञा प्रमाण को ज्यादा मानते सुनने से भी ज्यादा देखने जैसे। चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रतिज्ञा प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो।
2: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। Yes.

0: gift medo. Dunia me tu esa koi darpa nahi ni, jisme parmatma dikhai de. To aap is naye varsh ki aisi gift do jo vichitr darpan ban jao. Jo bhi dekhe, jo bhi sune, to usko baap dada hi dikhai de, sunai de, baap ka awaaz dik sunai de.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्युग में या मुक्ति धाम में

Bye.

0: Jai, despídese. Lekin bana nazar olsun. Etne to çatırı ona cante ona vidyakhe.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है, प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंदा हुआ है देने के लिए। छत्तीस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रही है। अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाएंगे, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? रहता है। जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक मिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ। नहीं, अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बंदा हुआ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जमा भी की

0: बच्चों, किस समय पर अपने प्रत व दूसरों के प्रत कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की अथॉरिटी एड होती जाती है। चेक करो अपने आप से, पूछो कि ये सारे खजाने जमा है और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा कही जाती। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाए। चाहेंगे खजाना बढ़ाए लेकिन बढ़ा नहीं सके।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक तो के नजदीक होने के कारण एक तो को सहयोग देना सहज हो जाता है, तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा है, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ, ये बाप दादा को अचल, तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना, सभी ने उठाया, हम सब एक है, ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके इसके कारण सोन बना है, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के रहेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी सुन

Awesome.

Choco.

0: Resiste. Ab sabka kitna samarpan ta mahin.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी कहते तो है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जब दिल से

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा मैं अपमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी विशेषता को भी मेरा मान कर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त करना देखो याद जो बनाती है उसमें भी जब बलि चढ़ाती है तो खुद नहीं बलि चढ़ती है, लेकिन किसको बलि चढ़ाती है? बकरे को। क्यों ढूंढा? क्यों बकरा मैं करता है? भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी की,

0: नहीं मैं बन यही बाप कहते हैं आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सक्सेसफुल कभी भी क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो? क्या मानते हैं? तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना, अधिकार है शक्तियां पीछे वाली सुनाओ, अधिकार है पक्का है, तो अधिकार प्राप्त होने में अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है मेजर रेड्डी अपन ने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तुझे अपना ही कमजोर पर्सन जितने लेकिन पर्सन होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाते और सफलता उस दीवार के अंदर विजय। ये आपका स्लोगन है, 10 वर्ष बदलो का है, पक्का है, पक्का सभी का। जब ये अभी का स्लोगन है, भविष्य वर्तमान तो सदा क्या रहना चाहिए? पर्सन चित या पर्सन चित, तो माया अपने कमजोर संकल्प चार बिछा लेती और अपने जाल में फंस जाते। विजय ही है, इससे संसार को समाप्त करो। फसो लेकिन समाप्त करो। शक्ति है समाप्त करने की। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जान को पढ़ने ने दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल। विजय मेरा बर्थ राइट, सफलता मेरा बर्थ राइट। ये बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त सहज और सुधै रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साथ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना। आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वो आराम नहीं करना धनलबान।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएंगी। वो कौन सी शक्ति? विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना, दिल से कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल की है, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो अचानक या अंधकार हो जाता है, अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है आप रोशनी का स्विच जो बात हो गई ना उसके क्यों क्या कौन कब कैसे इस क्यों क्यों में चले जाता। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो और बड़ी बात तो मुश्किल होती।

0: तो सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपन ने मास्टर सर्वशक्ति स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अब सेट नहीं होंगे। बिना सीट के अब सेट होते हैं। सीट है तो अब सेट नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

C'est vrai. Bibi.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ।

0: समझता हूँ करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा तो कर लिया। लेकिन चैन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना, तो चतुराई नहीं करना। पाप को भी बहुत री जाती है, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया के सागर हो ना, बाप को भी याद कराती है तो आप कौन हो। आपने कहा है ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन मैं सोचता से सुना के खत्म। एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चेक करो, कभी दुख ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। तो

What?

समझते हो पहली लाइन तो लेना राइट है, राइट राइट है मधुबन वाले, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए पहली लाइन से ले लेते हैं। ये फीलिंग

Awesome.

Osama.

Jesus.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी अपने अंदर चेक करो, मेरे वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई नहीं रहो। आप समझते हैं बदलना नहीं। चलो आपके जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबर वार तो है ही ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं। आप क्यों जजमेंट देते हो, वो तो बाप जज है ना। आप सब जज बन गए हो एक दो के, बाप भी तो देख रहा है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप सर्व बच्चों प्रति याद प्यार, सर्व बच्चों को मीठे मीठे का दो चार करवे और बाकी मीठे का फिर भी ऐसी आत्माओं के वृत्त भी सदा रहम दिल बने कि मियाँ के सागर बने, लेकिन अच्छा आपने अपने वृत्ति में किसी के वृत्त भी अगर नेगेटिव भाव रखा, इससे आपको क्या फायदा? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो छुट्टी है, अगर फायदा नहीं है परेशानी होती है, वो बात सामने आएगी, वो बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेज फुल बनना अलग चीज है, नॉलेज है ये रॉन्ग है ये राइट है, नॉलेज फुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रंग है, क्योंकि अपने में मोटाव व्यर्थ संकल्प याद की पावर कम नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्माए आकार वृत्ति वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है, वृत्ति से दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो, नॉलेज फुल भले बनो, लेकिन अपने मन में धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचरा। अभी अभी फुर्ती पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया वाणी से परिवर्तन, सिक्का से परिवर्तन। बहुत धीमे गति से होता है लेकिन बहुत धीमे गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन के प्यार स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
3: रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी बाबा बाबा कहती, दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लता बचे, इसलिए अपने सिक्की लते सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से

0: सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संगम युग श्रेष्ठ है वो, ठीक है, हीरे तुल्य, लेकिन ये रहम दिल करने वाले होंगे, लेकिन साधारण महसूस कराने की नहीं, वो बहुत करा लिए। वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर लिए। जो आए वो छाप लगे, 9 लाख की छाप लग जाए। समझा क्या करना है?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

threesome.

0: ese Bonacopi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sss.

Sss.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं और कुमारों के बिना सिर

0: teachers batao kumaron ki pinasin rachal sa te teachers kumar ki fishista ikmo ta chie kumar chotret sa kalab kari practical me la sota kyo kso kumar ulta to karenge nahi sultai karenge to kumaro me dhrat sankalap ki gift hai चाहती है वो कर सकती है ये गिफ्ट है बाकी जो उसका नाम के हाथ में है लेकिन कुमार गवर्नमेंट भी चाहती है कि कुमारों का सुकुमारों का कुमार नहीं अभी बाप दादा की ये इशारा प्रैक्टिकल में नहीं लाया सारे विश्व के कुमारों का ग्रुप मधुबन में इकट्ठा हो और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर यहाँ आवे कुमार अपना जलवा दिखा सकते कुमारों का ऐसा ग्रुप साथ ले जाओ कोई कहाँ का कोई कहाँ का कोई कहाँ का और डायरेक्ट निमंत्रण देवे सब देशों के हो और निमंत्रण देवे डेट फिक्स करे कुमारों में तो बाप दादा की बहुत बहुत बहुत शुभ उम्मीदें हैं और पूरन होनी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी तक पांच विकारों के व्यर्थ संकल्प चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों ये क्या ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना

Me.

two of me. This is part of the enemy. He coming. Вот оно, сын.

शब्दों में

0: समान बनना कोई।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोग छोड़ने में तो जय भाई जय बहने जो भी विशेष परिवार निर्विघ्न हो उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए।

0: भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है, ये वरदान है। दिल बड़ी और कायदे सर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को, सभी का एक ही संकल्प होना है। क्यों क्या नहीं होना ही, तो इस विधि से सब सहज होता है।
1: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
0: बस 10 मिनट आप सब निमित्त बने हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा विशेष संतुष्टता का शक्ति, संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां

にそっとした。国家便内情カインポチゲティエ。

época que Nicky

खराब चीज है, तो अगर कोई आप

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या। देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाए क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना। जो भी आए मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना। तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं देना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को ये जो परिवार की बात है, उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती, देखनी पड़ती। एकदम बड़ी दिल लो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार एक एक मत हो के चलना है, चलाना है, सिर्फ चलना नहीं चलाना भी। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता, चलाना है। जैसे बाप दादा ने अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने चलते हो, चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50 इतने होते नहीं है, लेकिन मानो बड़े स्थान है उसमें भी 50-60, अच्छा 100 भी समझो ज्यादा में ज्यादा। इतने नहीं है लेकिन समझ लो। तो बाप दादा तो सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया था, और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता, मीठे मीठे जानता है खट्टे भी है। लेकिन मीठे खट्टे कभी याद में कहा है, उन्हों को भी लाडले कहते हैं। नसरब कहते हैं लेकिन मेरा बच्चा मेरे भाव से चलाता है, क्योंकि बता दिया कि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा, राज किस पर करेंगे। अच्छी प्रजा भी तो चाहिए ना, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करे, परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या, अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं तो खराब का हो गया, जो अच्छे को भी बदल लेता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

is some ape.

en quelques.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चारों

Lee.

Donnerlagarde.

0: Holy Pachoco, Holy की मुबारक हो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आते नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा। आप

0: बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देके आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथ ही है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, जो बाप से प्यार है ना, बाप से प्यार है तो बाप को किसे प्यार है। तीवर पुरुषार्थ बच्चों,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा जमा कर सको उतना करते जाओ। क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जवाब पूछे बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सके। नहीं दुआएं देनी है आपको तो आप से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे होना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते कम नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Just

Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे अभी सब खुशी में भरपूर दिखाई दे रही है, ऐसे ही सदा रहते हैं। कोई भी बात आए लेकिन

खुशी नहीं लीजिए। जैसे अभी खुशी का चेहरा है, सने प्रेम का चेहरा, ऐसे सदा रहे। बोलो, रह सकता है? समझते हैं सदा रहेगा, पीती सोपी।

Yes.

그

Amigo, cosca.

Kushiki kamal sunai. Joy ek khushi.

Wish.

خوش‌رنگ، آر خوشی.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर दौरे की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर अल्लाह पहले नेचर नहीं अल्लाह पहला बना अलग चीज है इसी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इसी कर देवे इसी अर्थात मिलनसार टाइट नेचर बहुत रोना अच्छा ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो कुरान के बजाय उनकी विशेषता नहीं उस समय लगती अपने को मोल्ड कर सके मिलनसार हो सके छोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़ेपन में चल सके छोटे से छोटे पद में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके परों से रिगार्ड से चल सके बोल्ड कर सके इजी शरीर भी इजी रखती है ना तो बोल्ड जाती है जहाँ भी बोल्ड नहीं चल और टाइट होगा तो बोल्ड नहीं सके अल्लाह बेला भी नहीं इसी है तो चाहता इसी हो जाए अल्लाह बेला हो जाए नहीं बाप दादा ने कहा ना इसी हो जाओ इसलिए इसी हो गए ऐसे नहीं करना इसी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब सर्वशक्तिमान वापस आते हैं तो सर्वशक्तिमान के आगे अब
2: मानो लो
1: सिर्फ खाने पीने का नहीं होता, कई समझती है हमारे में तो पहनने खाने या रहने का तो ऐसा आकर्षण नहीं है जो मिलता है, जो बनता है उसमें चलते, लेकिन जैसे आगे बढ़ती है तो माया लोभ भी रायल और सूक्ष्म रूप में लाती और रायल लोभ के चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो दोनों में राय लो माया लाने का फल पुरुषार्थ स्टूडेंट है बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये कि मैं इतना कुछ करता हूं सब रूप से मदद करूं धन से और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाना, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है, अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं। वो अपमान के रूप में आ गया, यहां बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में यहां पूछे भी कोई नहीं, तो करना क्या है? करना या ना करना ही की बात है, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। इसे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब से Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ See.

Sati. Sad.

0: सकाश मिलती रहती। पूर्वज का कार्य क्या होता है, पूर्वजों का कार्य
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जय सुनबुके, जय

0: listening. समाजत
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीन रूपों से देखते हैं, वर्तमान, स्वराज, अधिकारी। अभी भी राजे हो, लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा।

0: बचत करी, भविष्य में विश्व राज अधिकारी और द्वापर से
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर, इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां जाओ वहां स्थित कर सकते हो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: छोड़ता है तो तो माया को आह्वान किया, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। बलवान कौन, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। तो माया बलवान हुई आप, तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है। नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक धुन दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव। उमंग उत्साह है, तो हर दिन उत्साह। इसलिए पक्का रखना, रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत बहुत प्यार, ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे बोल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती। कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है, हर बच्चा विशेष। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं, तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना, और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर

Papi, pap, tata. हर बच्चे को ये दो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ

0: manakim malik. जी मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बांह को चलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही? अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समृद्ध बन वायुमंडल में समृद्ध बन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार। करना ही है, करेंगे देखेंगे ये के नहीं चलेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई व्यर्थ वा विकारी सोपन लगाओ का सोपन Yeah.

geliyor.

सात सोचा अकेले नहीं, अकेले सोते हो ना तभी सो बनाते। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते, क्योंकि फरमान है या तो फरमान, अगर फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ करके दिल में अरमान होता है ना, मेरी पवित्रता स्वप्न में कदम अरमान है। कारण अन्न पेलापन, अल्लाह पे से नहीं बनो। जैसे आया भैया वहां की बातें सो जाओ, क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं ना, और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थी होते हैं। तो कहीं कहते हैं और तो टाइम मिलता नहीं, जब साथ में एक कमरे में जाते हैं लेन देन करते हैं। लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सुना नहीं। फरमान को उल्लंघन करना, अगर और टाइम नहीं है तो बिस्तरे के बाहर सोने वाले कमरे में नहीं, बाहर तो उसी जरूरी बात है तो बाहर सुनाओ, ये तो को सोते सोते नहीं सुन। और बातें करते करते कहीं तो 12:30 भी बजा देते, मस्त होते हैं बातों में, उनको टाइम का पता नहीं। समझते

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाए। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की चेहरा दिखाई दे, झलक दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके देखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और पाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है, आत्मा है, नंबर वन आत्मा है तो है। स्वयं बच्चों के याद के पाप रह ही नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। ये बेफिक्र बादशाह

Sabia.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो, जैसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

change.

Ciao.

0: Passate, proputine, 80 κοβολτσιαί, λίφτα κουλιάτκρι, πορσάτ κοβίκισκα, πορσνάλ καλιανίτζετ, προπού πορσάτ καλιανίτζετ. साथ नहीं कहा जाता, सहयोग मिलता है अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं बोले ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज अपने को रात्रि को बाप याद प्यार देना और मुबारक देना। बाप दादा की मुबारक रोज अपने को देना, बाप दादा देता है और आप अपने आप को देना। बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश, जैसे अमृत वेले चक्कर लगाते हैं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा वाक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है? अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथारत सेवा नहीं। कोई ना कोई कमी है सेवा में, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुश निमा। घिरा हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगा।

0: Siwaka, kasana kushi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हर एक वर्गीकरण से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं मुझे ये करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। उसका आधार है स्वयं।

0: टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, फेस्ट
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष संपर्क में आए चाहे

0: sad connection. Essa mas bot karo jo siate mehnat nahi karni pade logo maya se baar baar yudh nahi karni pade man संदेश देने की सेवा करो लेकिन जो सेवा का फल निकला है उस फल को मजबूत बनाओ पक्का बनाओ कच्चा फल नहीं रह जाए क्योंकि फास्ट जा रहा है समय का कोई भरोसा नहीं कब भी क्या भी हो सकता है और अचानक होना है बाप दादा को पता भी है कब होना है लेकिन अचानक पेपर होना है इसलिए जमा का खाता बहुत बड़ा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा। जो चाहते हैं उनको दे रहा है, आपको दे रहा है ना, मदद दे रहा है ना। जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी।
2: फिर तो बहुत जगह भी जाना पड़ेगा
1: जी।
2: बहुत लोगों का निमंत्रण होता है पीछे तो
1: नहीं, उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं कर, चल सकता है शरीर। कभी तो एकदम खराब होता है ना, वो बात दूसरी है, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती। ये भी दवाई है, कितने खुश होते हैं सबकी खुशी की खुराक मिलती है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य

क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते, अगर वाणी से सेवा करते हो

Sí.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Jesse, koi koi ko, शरीर में भी एकाकार होके बैठने की आदत नहीं होती है। कोई को होती है। समय जाओ।

ます。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बाप दादा ने देखा समय अनुसार जितना सेवा का उपागोत्सा अभी प्रैक्टिकल में है संपन्न बनना

इस पॉइंट के ऊपर भी स्वयं भी उमाकोत्सा में रहना और वायुमंडल में भी उमाकोत्सा दिलाना एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की

जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया, ऐसे अभी बाप दादा यही बच्चों में शुभाशय रखते हैं। वायुमंडल में फैलो,

0: baby. पुरुषार्थ है दीवार पुरुषार्थ करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर

现。

Chubby. Chạy đi dì dì. Sruff. Kaka. Sakra ka rakvi lag jata. Alla pehle pan maga. हो जाएंगे दोनों यान बहुत हो गए तो समझते हैं समय पर सोचा तो है क्या है उस पर अटेंशन रवासी चाल हो जाती है वो रिजल्ट ज्यादा है।

0: और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी। तो कोई भी अपने विशेषता को सदा काल का बनाना, ये आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा नहीं आता है। बीच बीच में पेपर रामानुसार होते, इसलिए सदा टेंशन से बहुत अटेंशन देते भी है उनको, तो बाप दादा दीवर पुरुषार्थियों के लिस्ट में रख, अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय दीवार, कुछ समय बीच में फिर पेपर आते, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: तो बाप दादा एक पास की रिजल्ट देखने जाए is

kurz

Sabbath.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आजकल की मॉडल

0: देखे है, अटेंशन बढ़ा है, इसलिए अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना ऐ लगा दो, बस ऐड कर दो अटेंशन। चलना तो सबको आई, ये तो वायदा है ही पक्का, साथ चलेंगे साथ राज करेंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है? जानते हो?
2: स्वरूप सोचने वाला नहीं, स्वरूप।

0: इस समय अंत में संगम समय पर भी समृद्धि स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में समृद्धि स्वरूप सोचना स्वरूप नहीं हो, इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मुहूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब बाप ने अपना बनाया ब्रह्मांड जीवन दी, तो ब्रह्मांड जीवन का आप सबका वायदा क्या है? बोलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो, तो बाप बच्चों से पूछ रही है बचपन का वायदा याद है? सहज करके दिए एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरी परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप रहता है। मेरा मन आया कहाँ से, जब मेरा तेरे को अर्पण किया, तुम मेरा मन आया कहाँ से। आप सभी तो बिन कोटि बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कोटि हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ चंद मार्ग सोचने के सबसे आश्चर्यवतों के सोचने को फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। वो स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय सेवा के सफलता में जय हर आत्मा को शुभ
2: सफलता का
1: समझ में।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: व्यक्ति भी है
4: Fuck।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है।

0: अपना बड़े परिवार विश्व में किसका है? आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं। वाह, फॉलोअर या परिवार, परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ? परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है, जानते हो ना? परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बोती हूँ चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होगा। आपका यादगार माला है, माला में देखो परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार, तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में एक परिवार एक बाप एक राज तो एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना के स्थिति में स्थित हो चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज दोनों की स्थापना सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता है उनका सिर्फ धर्म है, राज नहीं। या तो आप सबको राज भी करना है, तो राज में परिवार की आवश्यकता होती और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना। जा नहीं सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी संकल्प चलती है तो कितना भी योग पावरफुल चाहते है होता है क्यों? सारा मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहां अपवित्रता का अंश है वैसे नहीं आसन जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्र मनसा को हल्का नहीं करना। क्यों का मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्रह्म जीवन का जो
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है? ऐसे समय पर दैन्य शक्ति से आप दैन्य शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन पाप के तरफ होगा। अगर अपने उलझन में हो कैसी भी

ऐसे नहीं करना कि काम से

जब आप लोग खुद कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, परिवार में खिटखिट नहीं हो, ये नहीं होनी है, लेकिन आप ट्रस्टी बने।

rasti bangkis OJK. To or karban kongi. Mele bilkul nyari rasti bangkis. Mera ni ye mera ban mera naam kharab hoga meri gilani hogi mera bachcha aur mujhe meri saas mere ko aise kar de ye mera banata hai na sapati mera jahan bhi aaya wahan uti ka fira ho jata hai badal jati agar uti ka bhi badal diye na uljan mein ये मेरा पन उसको चेक कर और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझे इसलिए सभी बातों में ज्ञानी बनना है दिल शिकस्त नहीं बनना ज्ञानी बनेंगे हाँ ये बात है मन ज्ञानी बनेंगे सब कहना नहीं करना है समर्थ बन Our son shows father ka part pakka karo kachya nahi karo pakka karo sabhi mat wale ho himmat

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Sit.

Essay Subcenter. So

0: story. तो बच्चों के बुशारत की गति भी फास्ट हो जाती है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक स्वयं का स्वमान, दूसरा समय का। मैं तो आप साधारण नहीं हो, पूर्वजों आप एक एक के पीछे विश्व के आत्माओं का आधार। सोचो, अगर आप अलचल में आएंगे, विश्व के आत्माओं का क्या हाल होगा? ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाई जाती है ना, उनके पीछे विश्व का आधार है। जिसने दिल से माना मेरा बाबा, और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वो सभी जिम्मेवार है। क्यों? जब से आप कहते हो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब 9 लाख आएंगे तो साधन स्वतः ही जुट जाएंगे। घबराओ नहीं, हाल बनाना पड़ेगा। देखो भविष्य बहुत बहुत उज्ज्वल है। सब साधन मिल जाएंगे, बने बनाए हाल आपको मिलेंगे। बनाने नहीं, सिर्फ जो इस वर्ष का स्लोगन दिया है ना, सफल करो सफलता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Sorry.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं बच्चे सोचते

Si bajarte de ti, a prepararme a darme que hagarte. Lejen. Jesse Sakar Rope me Sada bachon ke saath rahe Aise Vatan me bhi Rehte के बिना बाप को भी मजा नहीं आता जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता अकेले नहीं रहते साथ में रहते साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाती रहती जैसे चित्रों में दिखाती है ना एक एक कॉपी के साथ उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया लेकिन ये इस समय का गायन है अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे चाहे रात को 2 बजे या 2:30 बजे किसी भी

0: сад личен. И то хамена. Орке.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है जो ज्यादा बोलते हैं
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाने जमा होता जाए। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है। हर खजाने का चार्ट देखा तो क्या देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है।
2: समय पर संपन्न
1: संपन्न करेंगे। समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है वर्षा लेने में। तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे अगर हाथ उठवाएंगे, कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता। और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते, अगर बहुत समय का जमा करता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सकते

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ही पोजिशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन माँ बाप की हुई हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर वन पाई, ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो लेकिन मुझे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

chiquito.

essay. Por Sharat me. Sada. Sad, sad, sad, sad.

Sss.